0: ऐतिहासिक वगनाट पिचाला, तीसरा तमाशा राजवाड़ी वगनाट पिचाला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पिचाला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था। मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी। अगर मैं गंभीर भूमिका करूं फिर भी लोग हंसते थे, तो वो दौर बहुत अच्छा था।
1: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा और हाँ। ये आपने भी किया कि जो मुद्दे हाँ। सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए, वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई। तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
0: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है। जब शिवाजी महाराज गनी में कावा करते थे उसमें शायरी होती थी और शायरी के पेट में से ही तमाशा निकला। तो पहले से ही यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है। तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी। ये तमाशे का उद्देश्य था। तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाशा सिखाने का। तुम सीखो, प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाशा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे न होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
1: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती थी? क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
0: तमाशा लोगों की जान था। जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे, तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा। और उनकी कर्मणों कोई थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता हुआ प्रकार है वो तमाशा है।
1: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे?
0: हाँ।
1: आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है और ये दौर ही इन सभी चीजों का है, और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, वो टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाशे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती, धूप रहती है उसमें भी लोग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाशा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाशा देखते हैं।
1: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
0: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाशा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है, जब तक तमाशा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है जब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
1: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
0: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अभी इंस्ट्रूमेंट बटन से ये बजाए जाते हैं, ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
1: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
0: जब से ये पुकार हुई है 25 जनवरी को, ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाशे में जो लोग आते हैं वो बहुत शांति से तमाशा सुन रहे हैं। मेरा तमाशा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिट्टियां बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, हमारी वीडियोज निकालते हैं, हमारे साथ फोटो निकालते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं, ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
1: रघुवीर जी, आपकी इस लंबी

0: यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाट्यों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
1: बहुत बेहतरीन रही है
0: रघुवीर जी। तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
1: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के आंग पे पूरा बदन झका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है, ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाचे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
0: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
1: नहीं नहीं, बदला है, एक महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे ताले सारे लोग जो है हमारे साथी तमाचे वाले, उनको भी पूछा, ये अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है? तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाचा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भिंगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी, वो भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था, वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाचा देख रहे हैं। इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
0: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
1: होता है।
0: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाचा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाचा भी बदल चुका है, पूरा तमाचा बदला हुआ है, तमाचे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, पैसा रोजगार तमाचे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है, मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है। कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते है और अपना नाम भी बहुत कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाशे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाशे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगता है।
0: रघुवीर जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆଗେଇ ଯାଅ, କେତେ ଆଗେଇଛ ପଛକୁ ଫେରି ତାହା ମାପି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ପଛେଇ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के

0: व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मूज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक कार्यक्रम प्रचारित होउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे आरंभ करुछु विशेष वंदना कार्यक्रम।
2: आजि नेत्रोत्सव दीर्घ दिन धरि अणसर पटिरे थिबा तीनि ठाकुर आजि भक्तमंडळीकु दर्शन देबे। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କି ଉତ୍କଣ୍ଠା, କେତେବେଳେ ଦିଶିବେ କଳାଦିଅ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଆସିପାରିନି ବୋଧେ। ତଥାପି ବି ସମୟ ଅଛି, କେବଳ ଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମନା ହୋଇଗଲେ ଛାଇଁ ଛାଇଁ ବାଟ ମିଳିଯିବ। ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଡୋରିରେ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର।

0: सः अवदत् यत् गतमासे नवदिल्ल्याम् अमेरिकादेशस्य व्यापार प्रतिनिधिना जेमिसन ग्रीर इत्यनेन सह अस्मिन् विषये अत्यन्तलाभप्रद वार्ता अभवत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य पर्यन्तं बिहार ओडिशा प्रदेशयोः प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। ऋतु विभागेन उक्तं यत् अद्य अरुणाचल प्रदेशे, छत्तीसगढ़े, झारखण्डे, नागालैण्डे, मणिपुरे, मिजोरमे, त्रिपुरायां, पश्चिम बंगाले, सिक्किमे, असमे, मेघालये च पृथक पृथक स्थानेषु प्रचण्ड वृष्टि भवितुमर्हति इति। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलम् अद्य बर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे त्रिक्रीडा श्रृंखलाया प्रथमायां एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडायां आतिथेयं इंग्लैंड दलं सम्मुखी करिष्यति। भारतीय समयानुसारं अपराह्ने सार्ध त्रिवादने क्रीडायाः आरम्भः भविष्यति। विराट कोहली रोहित शर्मा च भारतीय दलं सुदृढं कर्तुं पुनरागमनं कृतवन्तौ स्तः। तत्रैव जसप्रीत बुमराह अपि पुनरागमनं करोति। आयरलैंड इंग्लैंड देशयोः विरुद्धं विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलासु पराजयानन्तरं भारतं पुनरागमनं कर्तुमिच्छति। शुभमन गिल इत्यस्य नेतृत्वे दलं गुरुवासरे कार्डिफ नगरे द्वितीया एकदिवसीया स्पर्धा क्रीडिष्यति। श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमा च क्रीडा अस्मिन् मासे एकोनविंशति दिनांके लॉर्ड्स इत्यत्र भविष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक शुणु आज प्रचारित कार्यक्रम सूचना सका सतटा बजे दस मिनिट्रे आम स्वास्थ्य शुणे जरायु ग्रीवा कर्कट रोग जनसचेतनता आलोचना करेंगे डाक्तर दीप्तिराणी सामंत प्रभात परिक्रमा प्रचार कर सका सतटा बजे पचिश मिनिट्रे कथिका शुणे सका सतटा बजे पैंतीस मिनिट्रे विषय रही उत्तम संगे संगजार सिकरी उत्तम व्यवहार कहते विशेश्वर महांति मधुमालती सका सतटा बजे चालीस मिनिट्रे शिल्पी बादल कुमार आचार्य संगीत पूर्णचंद्र खुंटिया श्रीक्षेत्र माधुरी प्रचार कर सका आठटा बजे तीस मिनिट्रे शुणे नेत्रोत्सव आलोचना करेंगे गवेषक डॉ नरेश चंद्र दास वैदेश विलासर तेयाशीतम भाग प्रचार कर सका आठटा बजे पैंचाश मिनिट्रे गीत गीतिका शुणे सका नौटे दिन दशटे शुणे गीतिनाट्य किरात अर्जुन मूल रचना दोल गोविंद मंगराज बेतार रूपातर शरतचंद्र मूलिया प्रयोजना रमापद नंद संगीत राखल चंद्र मोहांती दिन एगारटा बजे दस मिनिट्रे आम गीत शुणे देवस्मिता मिश्र गाई भजन एवं आधुनिक गीत दासकाठिया गीत प्रचार कर दिन एगारटा बजे तीस मिनिट्रे परेषण करेंगे माटिया साहू एवं संसारी पंडा श्रोता एसएमएस मध्यम ओडिया एवं हिंदी कथचित्र गीत मंजुला मध्यान प्रचार कर दिन बारटे केन्द्रा गीत प्रचार कर दिन गोटे बजे दस मिनिट्रे परेषण करेंगे महेश प्रसाद नायक नारी महल दिन गोटे बजे कोड़े मिनिट्रे शुणे श्रीजीवू श्रीअंग वसन संपर्क ब्रजकिशोर दासों सह आलोचना ओडिया कथचित्र गीत प्रचार कर दिन दुईटा बजे पैंचाश मिनिट्रे अपराह पांचटे एवं राति सतटा बजे दुई मिनिट्रे असरती अपराह हिंदी कथचित्र गीत प्रचार कर अपराह तीनटे चिरहरित अपराह चारिटे शुणे श्रोता एसएमएस मध्यम ओडिया आलबम एवं ओडिया लघु संगीत समवेत कंठरे देशभक्ति गीत प्रचार कर अपराह चारटा बजे पंचावन मिनिट्रे जोबवाणी अपराह पांचटा बजे तीस मिनिट्रे गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरितमानसर अठस्तरीतम भाग प्रचार कर सन्ध्या छटा बजे दस मिनिट्रे कार्यक्रम उदय भारत शुणे सन्ध्या छटा बजे तीस मिनिट्रे विषय रही प्रधानमंत्री इ बस सेवा आलोचना कर विद्याधर महारणा राति सतटा बजे पचिश मिनिट्रे जिला हालचाल शुणे पूरी जिलार हालचाल कृषि संसार राति सतटा बजे तीस मिनिट्रे शुणे मांडिया जातीय खाद्य को नहीं व्यवसाय ए संपर्क आलोचना कर पद्मालय महांती राति आठटे शुणे पूरी अनुष्ठित विश्व प्रसिद्ध रथजात्रा जिला प्रशासन प्राक प्रस्तुति संपर्क पूरी जिलापा श्री दिव्यज्योति परिडा।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
4: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
3: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी।

0: जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश

0: अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमरीका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमरीका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक

0: हेलो
1: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहुची।
0: पुणी थारे
1: आपण डिजिटल अरेस्ट रे अछंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपणको पार्सल रे ड्रग्स मिलीची, लंबा फसीबे।
2: 10 लाख दियंतु, बंची जीवे।
3: सर एते कोठो
2: गोटे लिंक पठाई छी, एबे प्रोसेसिंग पाई 2 लाख पठांतु, बाकी परे।
3: सर 2 लाख
4: कोन हैला बापा?
3: जियो से माने कहउछंती मो पार्सल भितरु ड्रग्स मिलीची।
1: अरे
3: काटी देला,
4: पैनिक हुआनी बापा, डिजिटल अरेस्ट भले किछि नाही, ए सब फ्रॉड।
3: फ्रॉड
4: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि नामरे आसुथिबा साइबर अपराधीक फोन किंबा वीडियो कॉल प्रति सावधान रहंतु। तांकु कोनोसी टंका पठांतु नाही, आउ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करंतु। जदि बुद्धिमता न देखैबे
3: तो टंका हरैबे।
5: आरबीआई कहे सचेतन होवंतु, सतर्क रहंतु।
6: श्रोता बंधु, मन चाहुची ना आज कालिया सांतंकर सेई नवजौवन वेश को थरे आखि पुरी देखि देबाक। हाँ, जदि पाद जाऊनि मन कोड़ी नियंतु ना से कालिया सांत पाखु, थरे तार से कला कला आखि को देखि दियंतु ना, केते सुंदर से देखा जाउछंती। से प्रस्तुत होउछंती भाई भौणी सखा सहोदर को साथिरे धरी देखा देबाकु भक्तंको। से परा महाबाहु जुगे जुगे भक्त पाई सबु बेलास बेसन को तुच्छ करी धाई आसंती ता निकट को, बुझंती तार मन कथा अंतरर व्यथा। सेति पाई तो आपण परा भक्तर एकाधारे पिता माता बंधु सहोदर तथा स्वामी हे अंतर्जामी, आउ काल विलंब न करी ओल्हाई आसंतु, ओल्हाई आसंतु सेई बाई सेवा बच्छरी। आपणकर प्रिय दैतापती मानक द्वारा हुवंतु सचित, झुलि झुलि हलि हलि आसंतु पहंडीरे। आउ ए भक्त आखि पुरे थरटी देखि दो तमकु ए बड़ दंडरी।

0: वश्च कर्ण
1: आदेश करंतु गुरुदेव
0: धर धनु कर निरीक्षण देखि कह कि दिशुची गिरि सन्निधाने

0: धनुधरि कर तुम्भे लक्ष्य कि दिशु अछि मोते कह ताहा वृत्तांत।
1: गुरुदेव, बनर भीतरे मोते दिशई पर्वत, मेघमाला दिशु अछि तही अप्रमित, नदिशई आन किछि नेत्रपथी मोर, हेला कि नहेला देव करंतु विचार।
0: धनु रखि चल निज स्थाने, परीक्षा पाली एथर भीम सेनंकर। कुह भीम, निरीक्षण करि कह कि देखुछु तुही।
2: गुरुदेव, मते खाली गोटाए बड़ पर्वत आउ ता उपरे गोटाए बड़ खम्ब छड़ा आउ किछि बोली किछि देखा जाउ नाही।
3: ए समस्त भीम को कोन दृश्य हेबो गुरुदेव? पर्वत आकार बड़ बड़ मुंडा गोइंठा एंडुरी काकरा आदि खाइबा पदार्थ थिले ताकु स्पष्ट देखा जाइतांता।
0: दुर्योधन, एबे तुम्भ परीक्षार पाली निय धनु, कुह बाबू किदि से तुम्भंकु।
3: ताहले सुनंतु गुरुदेव।
2: धनु

0: गुरुदेव
1: आज मोर होइला विश्वास फिटिगला सन्देह मो मनु जानी तु हेबु निश्चय त्रिभुवन जयी जाओ बाबू जाओ निज स्थान चली आन परीक्षा आउ नाही प्रयोजन
2: किंतु गुरुदेव शास्त्रे अछि लेखा जोखी थिबा सरगोटी नविंदिले मुही लागिब अपार दोष दोषी हेबि मुही
1: बेस दृढ़ करी मुस्तित रविंद तु नाराच खड़ी काटी फाटी पुणी धान सुरंग फुटी गर गड़े गली जाई सोरिष को काटी आनिबु फाड़े सोरिष थिब तहि फाड़े तेबे मु जानिबि पार्थ गणा हेबु क्षत्रि पणे
2: गुरुदेव जेबे तब कृपा थिबो मुठारे सर्वदा निश्चय भेदिबि लाख सरमुने आसिबो सोरिष

0: नमस्ते श्री गुरुदेव स्वामी गुरुदेव प्रणाम चरणे
1: शिष्य गण उपस्थित महेंद्र मुहूर्त आरंभ करिबा आजि रण कौशल रे एक नूतन अध्याय
2: दंडवत आचार्य दंडवत
1: किए प्रजाघर डगर खबर कौन
2: खबर टा बड जबर महाशय आपण को पुत्र अश्वत्थामा मातुल अर्थात आपण को धर्मपत्नी कृपिंकर भ्राता अर्थात आपण को खोद अष्टमी बंधु अर्थात महामान्य कृपाचार्य एठाको मते पठाई कहिले
1: कौन कहिले डगर
2: कहिले चटापट जाई फटाफट खबर दबु बड़ो गोटाए मातबरिया भोजी भात हब समस्त जेमती पेटे पेटे गिली धन्य धन्य कहिबे
1: भोजी भात हेबो काहे कि डगर

0: गुरुदेव प्रणाम चरणे नियंतु ए गंडा दुई गोटी अर्जुन साथिरे मारी आनिलु बनरु।
1: धन्य तुमे भीम अर्जुन, किंतु तुम्भे तो आसिल बाबू, दुर्योधन न पेरिला किंपा, घटिला कि कानन रे अघटन किछि।
0: तेबे चालंतु गुरुदेव, एक क्षणी अरण्य जाई नेवाता संधान।
1: चालो बस्छ, चालो।

0: ए कथा तू कहा को कहिलु जरा
1: आपण को गुरुदेव आपण चाहिले मते करबा को शिष्य किंतु किंतु अहंकारी दुर्योधन देवारु निर्देश गोला धक्का दे मते गर्भी दुशासन बलात्कार तोड़ी देला आखड़ा सालरु
0: किंतु द्वादश योजन पथ दूरे रही तुही एभली कठिन विद्या साधिलु किपरी
2: से

0: राजा चली गला जो राज्य को जेमा दी मुद्रिका धरिकी आश्रम वासक पाइगला
1: पंचिला
0: स्वर्गपुरे थिले जे नारद मुनि बर केदे कथा हला बोली भाबिले बाप झियंकर जदि होइबो विवाह घर अन्याय घटी जीव
1: ये सारा संसार
0: चाउछे कळी टाए लगाइण देबी
1: कन्या ने बो नयनी देखीबी
0: कलिया नारद हेले विचार कले जे बाप झियंकर चिन्हा पर्चन
1: नहीं
0: ऋषि नहांती तपस्या को जाइछंती
1: अच्छा
0: यदि बलमान आसिकी बाहा हे पड़ब ताले अन्याय घटी गला संसार
1: निश्चय
0: मोरा कली लगेबा
1: आहा
0: ए विचार करी राम नाम गाइके आसिले
1: अच्छा अच्छा
0: भज राम राम पद बार बार करी ध्यान कर मुढ़
1: मानस रे राम नाम पद बार

दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

है जो खत तुझे जो तेरी राह में हजारों रंग के सितारे खिल गए। कन्यादान कथा चित्र रो ए गीतटी को सुनिया पई इच्छा प्रकाश करी आम पाख को एसएमएस करिसंती दिलीप नायक प्रदीप खर पारादीपुर तेबे आपन को अनुरोध रो गीतटी आपन को पई गाई छंती मोहम्मद रफी।

एसएमएस करिछंती समीक्षा सदीक्षा संतोष निर्मला मामाली कंट्रोल आठगड़ शुणवाक चाहती सत्य अनुसया कथाचित्र गीत गाई वाणी जयराम एवं साथी तेबे आपणक अनुरोध गीतटी शुणाउछु शुणि नियंतु।

कार्यक्रमरो शेष गीत सौदागर कथा चित्ररु अनुरोधर गीत सजना ही मुझे सजना के लिए गाई आशा भोसले तेबे सुनिया पाई इच्छा प्रकाश करी एसएमएस करी बांकीरु टुकु एवं लीजा।

0: प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा
1: कि 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से एफटीए हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% एमएसएमई आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन

जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने की

0: के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमरीका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
3: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से एफटीए

0: हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी है। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए, और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% एमएसएमई आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
1: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा।

0: विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेस्ट 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इतिबेला जाए कार्यक्रम शुणुले आकाशवाणी दिल्ली आपण मैंने कार्यक्रम शुणी आकाशवाणी कटक केन्द्र तेज आम परवर्त कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपर कि समय पर
2: गांरु सहर जाए सबु स्थान रे
3: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
3: केवल आकाशवाणी।

0: अजणा लिंक क्लिक करंतु नाही. साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु. एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु.
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयारी थिला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि.
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सैथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखि देली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए. चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़.

0: सुनिले कार्यक्रम युवबाणी।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

0: को मरामती करा जिवो बोली श्रीमती गर्ग कहिसेंते।
1: मुख्यमंत्री सड़क योजना जो थरे जो अनकनेक्टेड गाँ गुड़िक अच्छी से सब गाँ गुड़िक रे केमिति आमे रोड प्रोवाइड करिबा ता पई ये स्कीम अच्छी एथरे जो मिशन पावर जो नुआ गवर्नमेंट रे अच्छी सेटा पावर वाटर आउ रोड समस्त पहुंचाइबा पाई छोटा छोटा हेमलेट को भी पहुंचाइबा पाई सेटा सब यही योजना अंतर्गत हेबो एथिरे 4000 कोटी र प्रोविजन करा जाई छी।
0: भुवनेश्वर स्थित पर्यटन भवन में आयोजित सांबादिक सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री प्रभाती परिडा आनुष्ठानिक भाव वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2026-27 मार्गदर्शिका उन्मोचन कर गणमाध्यम को संबोधन कर श्रीमती परिडा कहते यह योजना मध्यम वरिष्ठ नागरिक सम्मान सुरक्षा और सरकारी सहायता सहित देशर विभिन्न पवित्र धार्मिक स्थल भ्रमण कराइवाप सरकार प्रतिश्रतिबद्ध।
2: 775 तीर्थयात्री 25 जन एक्सकर्ट अफिसर जिबे एवं जो मानको 70 रु 75 वर्ष हेथिबो सेमानको सहित जने सहयोगी जहांको 18 वर्ष रु ऊर्ध हेथिबो ए जो आरंभ तारीख बुक करिवे बा ऑनलाइन रो आवेदन हबो एथि आसंता काली ठु आरंभ हबो 15/7/2026 रु सरीब 14/8/2026।
0: सूचनाजोग्य योजना अधीन एपर्यंत 45,000 ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिक देशर विभिन्न प्रसिद्ध तीर्थस्थल दर्शन करिछन्ति। योजना रे आवेदन प्रक्रिया आसंताकाली ठारु आरंभ होई अगस्त मास 14 तारीख पर्यंत चलिबो। भुवनेश्वर स्थित लोकभवन अभिषेक हल ठारे राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपटी 2023 ब्याचर ओडिशा प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षार्थी सहित भाव विनिमय करिछन्ति। एही अवसर में प्रशिक्षार्थी केन्द्र और राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनागुड़िक संपर्क में ज्ञान अर्जन कर सरकार और नागरिकों मध्य एक सेतु भाव कार्य कर उन्नत सेवा प्रदान करने को राज्यपाल कहते। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रार आयोजन पर ट्राफिक सुपरिचालना उपरे गुरुत्व दिया कड़ा व्यवस्था करा जायछि। 6 नुआ पार्किंग स्थली को मिसाई मोट 30 पार्किंग स्थान करा जायछि। सेथिमध्यरु 3 स्थान रे ड्रोन द्वारा ट्राफिक गतिविधि उपरे तीक्ष्ण नजर रखाजिबो। पुरी जिला प्रशासन ट्राफिक पुलिस पक्षरु स्वतंत्र आप ट्राफिक कंट्रोल रूम सीसीटीवी क्यमेरा चैटबॉट रो व्यवस्था करा जायछि। चलित वर्ष रथयात्रा रे प्रजुक्ति आधारित ट्राफिक परिचालना को सर्वाधिक गुरुत्व दिया जायछि। सही भली भक्तों सहायता पई 73 ट्राफिक एड पोस्ट स्थापन करा जायछि। संबलपुर जिलापालंक सम्मेलनी कक्षरे राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतारे एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइजैछि। एथिरे मंत्री जिलार विकासमूलक विभिन्न कार्यक्रम और राजस्व सेवार अग्रगति संपर्क में समीक्षा करथिले। वसुंधरा योजनारे पट्टा आवंटन कार्य शेष पर्यायर पहुंचितबा बेले विद्यालय और कलेजगुडीकु पट्टा देबा कार्य त्वरित गतिरे आगै चलिछि। डिसेम्बर मास शेष सुद्धा जिल्लार समस्त शिक्षानुष्ठानगुडिकर निजस्व जमीपट्टा रहिबो बोली मंत्री श्री पुजारी कहिछन्ति। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। पुरी श्रीमंदिरे आज नेत्रोत्सवरे महाप्रभु श्रद्धालुंकु नवजौवन बेशरे दर्शन देउछन्ति। चलित वर्ष नीतिबहुल रहिथिबारु दर्शन सामान्य विलंब होइथिला। परंपरा अनुसारे प्रथमे झुण बाहरिबा परे श्रीनगरकु खड़ी प्रसाद विजयनीति अनुष्ठित होइथिला। दैतापति सेवकमाने घंट घंटा छत्री सह वैजयंती ओ विजय कहाळी बजाई श्रीमंदिररु बाहरिथिले। समस्त सेवकमाने रूपाथाळीरे महाप्रभुंक दिव्य द्रव्य सबकु धरि विजय करिथिले। महाप्रभु संपूर्ण सुस्थ ओ रथयात्रा पई बाहरिबे बोली गजपति महाराजंकु अवगत कराइथिले। गजपति महाराज सेवकमानंक प्रभुंक प्रसाद ग्रहण करिबा परे रथयात्रार भव्य आयोजन नै आलोचना करिथिले। आसंताकाली प्रतिपदा तिथिरे श्रीजीवंक उभयात्रा अनुष्ठित हेबो। गुरुवार दिन सिगुंडीचाकु दृष्टिरे रखि आसंताकाली सर्वसाधारण दर्शन बन्द रहिथिबा नै श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नयागढ़ जिला रणपुर खंडपड़ा दशपल्ला भापुर गणिया राजसुनाखला शरणकूला आदि विभिन्न जगन्नाथ मंदिर में आज पवित्र नेत्रोत्सव अवसर में नवजौवन बेश अनुष्ठित होइजैछि। प्रत्युषरु जयमंगल आलती नीतिस्नान न्यास मणोही करा वर्तमान साहण मेला भक्त माने चतुर्धामूर्ति दर्शन करुछन्ति। सुवर्णपुर जिल्लार पाताली श्रीक्षेत्र समेत समस्त जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु नवजौवन बेश अनुष्ठित होइछि। आसंता गुरुवार दिन जिल्लार हेबाकु थिबा रथयात्रा पई समस्त प्रस्तुति चूड़ान्त पर्यायर पहुंचिछि। बौद्ध जिल्लार पाताली श्रीक्षेत्र नायकपड़ा गुंफा ଠିଡିକାଜର, ନାରାୟଣନଗର, ମନମୁଣ୍ଡା, ପୁରୁଣା କଟକ, ବୁଟୁପାଲି, କଣ୍ଟାମାଳ, ଜଗତୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି

0: क्राउड मैनेजमेंट केमती ठीक से हम श्रद्धालु जो माने आसुचंती तांको पई केमती सब प्रकार व्यवस्था करा जीव एहा को नेकी मध्य हमर समस्त कार्यक्रम चूड़ांत पर्याय रे पहुंचछ।
1: सबुठारु गुरुत्वपूर्ण से दिन जदि ठीक समय रे सब नीति निर्घंट प्रभुंकर हुए तेबे कार्य सब सुरखुर रे हबो रथटणा सरिबो सेतिपई किछि विशेष योजना करा हिछि एथरो
0: देखंतु हमर नीतिकांति को नेकी आमे हमर जो छत्तीसा निजोग मीटिंग हुए सेटारे मध्य आमे विशेष भाव सब जिनस सेवायत बंधु मान सहित आमे आलोचना करिछु एहा सहित आमर श्रीमंदिर एडमिनिस्ट्रेशन तरफ सब प्रकार कार्यक्रम आम हाथ को नहींचु सठिक समय जमी सब कार्य हम समस्त सेवायत बंधु मान सहित आमर समन्वय रही नीतिकांति समय हम एवं महाप्रभु आशीर्वाद रू ही सब कार्य होता तेणु आम महाप्रभु आगे प्रार्थना करुचु कि जहां सब नीतिकांति अच्छी जमी आम जहां भी प्रचेषा अच्छी ठीक भाव परिचालना कर
1: तेरे प्रतिवर्ष श्रद्धालु संख्या बढ़ुची ए वर्ष आशा कर श्रद्धालु आहरी बढ़े जे श्रद्धालु माने पुरी आसीबे एवं पुरी रे से माने रहिबे कोठी खाइबे किभली दर्शन करिबे कोठी गाड़ी रखिबे किभली खाद्य खाइबे ठीक से जल जोगाण से मानको पई हबो ए सब व्यवस्था किभली भाव रे करा जायछि।
0: निश्चित भाव रे जेंती श्रद्धालु संख्या धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि एहाकु नेकि आमे बहुत बड़ लेवल रे आमे एथरक अरेंजमेंट करिछु आमर विभिन्न जगार पार्किंग स्पेसेस आमे आईडेन्टीफाई करछु एथरक गत वर्ष अपेक्षा एथरक आहुरी एडिशनल पार्किंग स्पेस आईडेन्टीफाई करछु ता छड़ा व्यापक भाव रे क्राउड मैनेजमेंट पई पुलिस मुतयन कराई एथरक केवल आमर स्टेट पुलिस नु आमर विभिन्न बटालियन्स तथा आमर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तथा विभिन्न फोर्स अच्छा जमी रैपिड एक्शन फोर्स हो एनएसजी हो समस्ते विभिन्न कार्यपाई से विभिन्न जगार मुतयन कराई या सहित आमर कंट्रोल रूम रही जोटिक कौन से भी इम्पोर्टेंट इश्यू जिते आसव से आम केमती ठिक भाव कम्युनिकेट कर ठिक भाव कनसर्ण डिपार्टमेंट को जन पार ए सब जिनस आम व्यवस्था करिचु सो दैट आम श्रद्धालु नंबर जिते बढ़े आम आम व्यवस्था से अनुसार प्लानिंग करवा सहित रेलवे डिपार्टमेंट एनएचएआई तथा अलग सब ट्रांसपोर्टेशन कमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट समस्त सहित आम समन्वय रखीचु जमीक आमको जो श्रद्धालु मैंने आसुचान इनफरमेसन आमको आगु मिल हिसाब से आम आम व्यवस्था करवा
1: निश्चित भाव में जितेबाला रुंड हे आम श्रद्धालु दुर्घटना न घटव तो कही हेनी तेरे जदि किसी हुए से तत्णात कौन व्यवस्था करने कौन किसी विशेष व्यवस्था कराई
0: देखु आम हाईवे पेट्रोल ठू आरंभ कर पूरा आम कमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तरफ विभिन्न स्थान आम सब अवेयरनेस कैंपेन भी चलेचु विभिन्न एडवाइजरीज आसरक आम पाखापाखि 65 स्थान एलईडी स्क्रीन लगुच एलईडी स्क्रीन गुड़िकमें सब एडवाइजरीज सब कंटिन्यूअसली चलेबा ता छड़ा जो बर्षा संभावना रही आम व्यवस्था करचु फायर डिपार्टमेंट सहित मिसिकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स पाखापाखि 33 स्थान आईडेन्टीफाई कर वाटर लॉगिंग टाइप सिचुएशन हो पारे से सब स्थान हाई पावर पंप्स लगा हबो सो दैट आम जल निष्कासन करी ग्रीष्म ताप गुळगुळी हुए तापाई भी आम विशेष व्यवस्था करिचु सेठारे आमर जो फर्स्ट एड सेंटर्स आ 8 जो टेम्पोररी हस्पिटल्स आम रहउची सेठारे डॉक्टर्स माने रहिबे एवं इमीडिएटली आमर वॉलंटियर मानक साहाज्य रे सेमाने तांकर चिकित्सा करिवे सबु जगार आम पानीय जल सहित ओआरएस व्यवस्था रखुचु तेणु कौन जगार किसी असुविधा हेले सांगे सांग आम टीम लोक पाखक पहुंची पारे पुलिस डिपार्टमेंट तथा फायर डिपार्टमेंट तरफ क्रैक टीम्स रोचन्ति जो मान हाथ में ऑक्सीजन कैनिस्टर रोचि क्या जदि अणनिश्वासी लगुच हालिया लगुच इमीडिएटली आम ऑक्सीजन दे पारिबा एवं नॉर्मल कंडीशन को आनी पारिबा तो ये सब व्यवस्था आम आम तरफ एथरक व्यापक भाव में कर
1: तबे भक्त मानको श्रद्धालु मानको सूचना दबा एवं भक्त मानकर किसी समस्या हेले से प्रशासन सहित तो कनेक्ट हेबे सेतिपई आगे सब सूचना केन्द्र होतला एबे तो सोशल मीडिया जुग एआई जुग से दृष्टि प्रशासन किभली भाव निजक एथर अपडेटेड कर रखी
0: देखंतु एथरक सूचना को आम केमिति प्रसारित करिबु ताकु आम सोशल मीडिया उपर एथरक बहुत अधिका ध्यान देचु सोशल मीडिया रे आमर बेसिकली सब जो आमर प्रत्येक दिन जहां घटना रहुचि प्रत्येक दिन नीति जहां रहुचि ता छड़ा आमर जो सब प्रिपेरेटरी एक्टिविटीज रहुचि विभिन्न डिपार्टमेंट रो सेगुडा को सब आम जणौचु।

0: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्ते श्रोताओं, हिंदी शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत। आज की चर्चा के विषय है प्रशासन संबंधित वाक्यांश का अभिव्यक्ति। इस बारे में हमें शिक्षित करने के लिए हमारे साथ हैं गुरुजी डॉक्टर अजित प्रसाद महापात्र और उनके साथ हैं छात्र अभिनव शर्मा।
2: प्रणाम गुरुजी।
3: जीते रहो, बैठो। सुनो, मैं अभी तुम्हें कुछ प्रशासनिक संबंधी वाक्यांश और अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा। किन के बारे में बताऊंगा? वाक्यांश और
2: अभिव्यक्तियों के बारे में
3: बताऊंगा जो हमें कार्यालय में हिंदी और अंग्रेजी कामकाज करने में अत्यंत आवश्यक होते हैं और न जानने के कारण गलतियां होती है। कर्मचारी बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है अंग्रेजी का हिंदी में क्या होगा और हिंदी का अंग्रेजी में क्या होगा।
2: जी गुरुजी।
3: जैसे अबव गिवन अंग्रेजी में है, अबव गिवन इसका हिंदी होगा जैसे ऊपर दिया हुआ या ऊपर लिखित। वैसे एक शब्द मैं कहता हूँ अकॉर्डिंगली, क्या होगा हिंदी में जानते हो? अकॉर्डिंगली,
2: तदनुसार।
3: तदनुसार माने इसके अनुसार या उसके अनुसार जो कहते हैं इसको कहते हैं। उसके लिए जो नियत शब्द है पारिभाषिक शब्दावली में वह तदनुसार। उसी प्रकार अबव सेड क्या होगा?
2: ऊपर कहा हुआ।
3: ऊपर कहा हुआ नहीं होगा, उपर्युक्त। क्या होगा?
2: उपर्युक्त।
3: हाँ, जोर से कहो,
2: उपर्युक्त।
3: हाँ, ए ब्रीफ नोट इज प्लेस्ड बिलो, अंग्रेजी में ए ब्रीफ नोट इज प्लेस्ड बिलो, इसका हिंदी में क्या होगा? नोट।
2: नोट नीचे दिया गया है।
3: नोट नीचे दिया गया है, ठीक है, लेकिन तुम्हें लिखना है संक्षिप्त नोट नीचे दिया है।
2: जी,
3: क्या काम?
2: संक्षिप्त

0: लिप्त नोट नीचे दिया है।
1: हाँ, और देखो एक्सेप्टेबल प्रपोजल इसके लिए क्या है हिंदी में जानते हो?
0: स्वीकार्य प्रस्ताव।
1: स्वीकार्य प्रस्ताव। अच्छा एक्सेप्टेंस इज अवेटेड अंग्रेजी में है, एक्सेप्टेंस इज अवेटेड क्या होगा?
0: स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
1: हाँ बहुत अच्छा, स्वीकृति की प्रतीक्षा है। एक्सेप्टेंस जो है उसको क्या कहते हैं हिंदी में हम?
0: स्वीकृति।
1: स्वीकृति। एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट क्या होगा?
0: भुगतान के लिए स्वीकृत है।
1: स्वीकृत है, भुगतान के लिए स्वीकृत है। अच्छा अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस क्या होगा? कन्वीनियंस सुविधा।
0: अनुसार।
1: हाँ सुविधा के अनुसार या सुविधा अनुसार। उसी प्रकार अकाउंटेंसी एक्सपेंसेस एक शब्द है, अकाउंटेंसी माने अकाउंट संबंधी जो है, अकाउंटेंसी एक्सपेंसेस क्या होगा?
0: लेखाकरण व्यय।
1: लेखाकरण व्यय। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट जानते हो? एक्नॉलेजमेंट कहते हैं जब चिट्ठी भेजते हैं, एक्नॉलेजमेंट पावती जो कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट इसके लिए क्या शब्द है?

0: अकाउंटेंसी एक्सपेंसेस क्या होगा?
1: लेखाकरण व्यय।
0: लेखाकरण व्यय। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट जानते हो? एक्नॉलेजमेंट कहते हैं जब चिट्ठी भेजते हैं, एक्नॉलेजमेंट पावती जो कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट। इसके लिए क्या शब्द है?
1: प्राप्ति सूचना।
0: प्राप्ति सूचना, बहुत अच्छा। ऐसे कृपया फौरन कार्रवाई करें, ऐसा हिंदी में कहते हैं, कृपया फौरन कार्रवाई करें। इसके लिए इंग्लिश में क्या है जानते हो?
1: एक्शन
0: एट वंस प्लीज, ऐसे कहते हैं अंग्रेज में, एक्शन एट वंस प्लीज। इसके लिए हिंदी क्या होगा?
1: कृपया फौरन
0: कार्रवाई, कृपया
1: कृपया फौरन कार्रवाई करें।
0: हाँ, उसी प्रकार एक्शन हैज ऑलरेडी बीन टेकन इन दिस मैटर। एक्शन हैज ऑलरेडी बीन टेकन इन दिस मैटर, तो क्या हो गए?
1: इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है।
0: हाँ ठीक है, इस मामले में माने इन दिस मैटर, इसको कहते हैं इस मामले में। एक्शन के लिए क्या शब्द है? कार्रवाई। क्या शब्द है?
1: कार्रवाई।
0: कार्रवाई की जा चुकी है, कार्रवाई की जा चुकी है। वैसे एक्ट ऑफ ऑनर क्या होता है? एक्ट ऑफ ऑनर
1: मनार्य स्वीकृति,
0: नहीं मानार्थ। मानार्थ सकार कहते हैं, मानार्थ स्वीकृति मत भी कहते हैं
1: जी गुरुजी।
0: अच्छा, यदि हम किसी सलाह की अगर तुम मांगना चाहते हो, किसी से सलाह मांगने चाहते हो, जैसे तदनुसार सलाह दें, एडवाइस, एडवाइस कहते हैं, और क्रिया में एडवाइज हो जाता है इंग्लिश में, एडवाइज अकॉर्डिंगली। इसके लिए हिंदी में क्या कहोगे?
1: तदनुसार सलाह दें।
0: सलाह कौन सा लेंगे? स्त्रीलिंग। आप कहेंगे तदनुसार सलाह दें, एडवाइज अकॉर्डिंगली, ठीक है। और एडवाइज टेलीग्राफिकली अगर कहेंगे तो क्या होगा?
1: तार से सलाह दें।
0: हाँ, तार से सलाह दें, ठीक है। अच्छा, आफ्टर एडिक्वेट कंसिडरेशन, एडिक्वेट माने यथार्थ रूप से, पर्याप्त रूप से विचार होने के बाद जो कहते हैं, क्या होगा?
1: समुचित विचार के बाद।
0: बहुत अच्छा, समुचित विचार के बाद। आफ्टर डिस्कशन क्या होगा?
1: विचार विमर्श के बाद।
0: हाँ, डिस्कशन कहते हैं हम, विचार विमर्श, आफ्टर हो गया, के बाद। एग्री टू क्या होगा? एग्री टू
1: सहमति है।
0: सहमति है। अच्छा बताओ, ये बताओ अप्रूवल के लिए क्या शब्द है हिंदी में? अप्रूवल
1: अनुमोद,
0: अनुमोदन, मोद नहीं, अनुमोदन, अनुमोदन। वैसे अगर तो लिखा जाएगा अप्रूवल मे बी अकॉर्डेड टू, तो क्या होगा? अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए। अप्रूव्ड एज प्रपोज्ड, ऐसा लिखा जाता है, अप्रूव्ड एज प्रपोज्ड, मैंने जैसे प्रपोज किया गया है, प्रस्ताव भेजा गया है, वैसे अप्रूव हो गया है
1: जी।
0: तो इसके लिए हिंदी में क्या है?
1: यथा प्रस्ताव अनुमोदित।
0: यथा प्रस्ताव अनुमोदित, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ मुझे अभिनव, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, तुमने कहा होगा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसके लिए क्या शब्द है हिंदी में?
1: वस्तुतः।
0: वस्तुतः, यथार्थतः, ये भी कह सकते हो। एज ए रिजल्ट ऑफ के लिए क्या है?
1: के फलस्वरूप।
0: के फलस्वरूप, फल नहीं, फलस्वरूप, कहो और एक बार,
1: के फलस्वरूप।
0: हाँ, ये बताओ निदेशानुसार हिंदी में है, निदेशानुसार यानी निदेश के अनुसार, इंग्लिश में इसके लिए क्या प्रयोग है?
1: एज डायरेक्टेड।
0: एज डायरेक्टेड, वैसे यथासंभव क्या होगा? एज पर एज पॉसिबल, अंग्रेजी में कहते हैं एज पर एज पॉसिबल, हिंदी में क्या होगा?
1: यथासंभव।
0: हाँ, यथासंभव इसके लिए प्रयोग है। उसी प्रकार सिफारिश के अनुसार, एज रिकमेंडेड, रिकमेंडेड के लिए कौन सा शब्द है?
1: सिफारिश।
0: सिफारिश, और भी शब्द है संस्तुत, क्या कहा मैंने?
1: संस्तुत।
0: हाँ, यथा संस्तुत कहते हैं, इसके लिए यथा संस्तुत शब्द का भी प्रयोग
1: होता है।
0: हाँ, वैसे बिल ऑफ पेमेंट क्या होगा?
1: भुगतान बिल।
0: भुगतान बिल, ठीक है, बिल ऑफ पेमेंट। पेमेंट के लिए कौन सा शब्द है?
1: बिल।
0: मैं भुगतान, पेमेंट के लिए भुगतान, बिल के लिए बिल, ठीक। अच्छा, बिल आउटस्टैंडिंग होता है, माने बाकी रह जाता है, जो आउटस्टैंडिंग बिल कहते हैं उसको, बिल आउटस्टैंडिंग, उसके लिए क्या प्रयोग है हिंदी में?
1: जी बकाया बिल।
0: बकाया बिल है, बहुत अच्छा। अच्छा, बेईमानी से हिंदी में अगर कहोगे बाई, क्या होगा इंग्लिश में? क्या होगा?
1: बाई डिसमेंट,
0: डिजानेस्ट, डिजानेस्ट मीन्स, इंग्लिश में कहते हैं बाई डिजानेस्ट मीन्स, बेईमानी से, बेईमानी से पैसा कमाते हैं, आपको कहना है बेईमानी से हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में कहें तो बाई डिजानेस्ट मीन्स। अच्छा, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए क्या शब्द है हिंदी में?
1: रजिस्ट्री से।
0: रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्री से, और इसके लिए और एक शब्द है, जैसे पंजीकृत डाक द्वारा भी कहते हैं, क्या कहा मैंने?
1: पंजीकृत डाक द्वारा।
0: हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए ये पंजीकृत शब्द का भी बहुत प्रयोग होता है। वैसे कलेक्शन ऑफ एरियर्स कहते हैं, कलेक्शन ऑफ एरियर्स, तो क्या है एरियर्स के लिए?
1: जी बकाया वसूली।
0: बकाया वसूली माने जो बकाया है, एरियर्स जो है उसका वसूल करना, वसूली कहते हैं।

0: वैसे कम इन टू फोर्स अंग्रेजी में है, कम इन टू फोर्स, तो क्या हुआ इसके लिए हिंदी में क्या होगा?
1: लागू होना,
0: लागू होना, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ मैच्योरिटी के लिए क्या है?
1: परिपक्वता तिथि।
0: डेट ऑफ मैच्योरिटी के लिए परिपक्वता तिथि, डेट के लिए तिथि है, मैच्योरिटी के लिए परिपक्वता है। अच्छा ये बता, डे टू डे वर्क, आज का जो काम है, माने डे टू डे वर्क जैसे कहते हैं दैनंदिन कार्य, इसके लिए क्या है?
1: दैनंदिन कार्य।
0: दैनंदिन कार्य, वैसे कहते हैं डिबैर्ड फ्रॉम सर्विस, किसी को सर्विस से निकाल दिया गया है, जो नौकरी करते थे
1: जी
0: उसको, किसी कर्मचारी को कार्यालय से निकाल दिया गया किसी कारणवश या किसी वजह के, तो डिबैर्ड फ्रॉम सर्विस कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसके लिए हिंदी में क्या कहोगे?
1: सेवा से वर्जित।
0: सेवा से वर्जित, ठीक है, वर्जित किया गया, मैं निकाल दिया गया। अच्छा डिसीजन इज अवेटेड, इसके लिए क्या है हिंदी में?
1: निर्णय की प्रतीक्षा है।
0: निर्णय की प्रतीक्षा है, अवेटेड के लिए प्रतीक्षा, और डिसीजन के लिए क्या है? निर्णय,
1: जी
0: डिसीजन के लिए क्या है, कौन सा शब्द है?
1: निर्णय।
0: निर्णय की प्रतीक्षा है। उसी प्रकार करेक्शंस एंड अल्टरेशंस, करेक्शंस एंड
1: अल्टरनेशंस।
0: अल्टरनेशंस क्या होगा इसको हिंदी में? मैंने अंग्रेजी में कहा, हिंदी में तुम बताओ क्या होगा?
1: शोधन और परिवर्तन।
0: परिवर्तन, अल्टरेशन के लिए परिवर्तन, और शोधन किसके लिए?
1: करेक्शन।
0: करेक्शन के लिए। उसी प्रकार डैमेज एंड डिफिशियंसी रिपोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं, डैमेज एंड डेफिशिएंसी
1: डेफिशिएंसी रिपोर्ट।
0: रिपोर्ट, इसके लिए क्या होगा?
1: क्षति और कमी की रिपोर्ट।
0: क्षति, क्षति किसके लिए प्रयोग हुआ है?
1: डिमेज।
0: डैमेज, नॉट डिमेज, डिमेज नहीं, डैमेज, ये डैमेज हो गया, नष्ट हो गया,
1: जी
0: क्षति, और कमी, कमी डेफिशिएंसी,
1: जी
0: रिपोर्ट, रिपोर्ट की है, स्त्रीलिंग है।
1: जी
0: उसी प्रकार डिपार्टमेंटल इरेगुलरिटीज इंग्लिश में कहते हैं, डिपार्टमेंटल इरेगुलरिटी, इसके लिए क्या है हिंदी में?
1: विभागीय जांच पड़ताल।
0: जांच पड़ताल नहीं है, अनियमितता, इरेगुलरिटीज, रेगुलरिटीज नहीं है, मैंने नियमित रूप से कुछ काम नहीं हुआ है,
1: जी
0: अनियमितता, विभागीय अनियमितता। अगर तुम कहोगे डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो तुमने अभी कहा वो शब्द है जांच पड़ताल, क्या कहा मैंने?
1: जांच पड़ताल।
0: अगर डिपार्टमेंटल है तो क्या होगा? विभागीय कहो, क्या होगा?
1: विभागीय।
0: हाँ, इसे डिटेल्ड इंक्वायरी क्या होगा?
1: व्यापक जांच।
0: हाँ, इंक्वायरी के लिए क्या शब्द निकला?
1: जांच।
0: जांच, और व्यापक, डिटेल्ड के लिए व्यापक,
1: जी
0: उसी प्रकार डिवॉइड ऑफ क्या होगा? से
1: से
0: रहित,
1: रहित।
0: या कि से के बिना।
1: जी
0: अच्छा डिस्चार्ज ऑफ सर्टिफिकेट क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ सर्टिफिकेट,
1: सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र।
0: सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट के लिए प्रमाण पत्र, और डिस्चार्ज यानी सेवा से मुक्ति मिल गई, सेवा
1: जी
0: मुक्ति प्रमाण पत्र। वैसे अंग्रेजी में लिखते हैं फाइल में, अर्ली एक्शन इन द मैटर इज रिक्वेस्टेड, इंग्लिश में अर्ली एक्शन इन दिस मैटर इज रिक्वेस्टेड,
1: रिक्वेस्टेड।
0: जैसे अनुरोध है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करें, इन दिस
1: जी
0: मैटर इज रिक्वेस्टेड, अनुरोध है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करें। कार्रवाई किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है?
1: मैटर।
0: एक्शन, एक्शन, अर्ली एक्शन मैंने शीघ्र कार्रवाई,
1: जी
0: मामला किसके लिए है? मामला
1: मैटर।
0: मैटर, ठीक, और अनुरोध है रिक्वेस्टेड।
1: जी
0: उसी प्रकार अर्ली ऑर्डर्स आर सॉलिसिटेड, अर्ली ऑर्डर्स आर सॉलिसिटेड, जानते हो?
1: नहीं।
0: सॉलिसिटेड जैसे शीघ्र आदेश देने का अनुग्रह करें, इसका क्या होगा?
1: शीघ्र आदेश देने का अनुग्रह करें।
0: ठीक, उसी प्रकार पर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन कहते हैं, पर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन, जानते हो इसका हिंदी क्या होगा?
1: नहीं गुरुजी, नहीं जानता।
0: पर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन, आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचनार्थ, नेसेसरी इंफॉर्मेशन कहते हैं, पर
1: जी
0: फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन एंड इंफॉर्मेशन ऐसा कहा जाता है,
1: जी
0: तो उसके लिए हिंदी में प्रयोग होना चाहिए आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचनार्थ या
1: जी
0: सूचना के लिए।
1: जी
0: अच्छा ये बताओ, पर सिंपैथेटिक कंसिडरेशन के लिए क्या होगा? सिंपैथी जानते हो, सहानुभूति,
1: जी
0: सिंपैथेटिक कंसिडरेशन क्या होगा?
1: सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए।
0: ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए। अच्छा फॉरवर्डेड एंड रिकमेंडेड,
1: गुरुजी नहीं जानता।
0: फॉरवर्डेड मैंने अग्रेषित क्या होगा?
1: अग्रेषित।
0: हाँ बस, रिकमेंडेड के लिए मैंने कहा था अभी संस्तुत,
1: जी
0: क्या कहोगे? तो दोनों मिला के कह दो,
1: अग्रेषित और संस्तुत।
0: बस हो गया फॉरवर्डेड एंड रिकमेंडेड।
1: जी
0: अच्छा वैसे हिंदी में मैं बताता हूँ अभी, तुम इंग्लिश में बताओगे, इंग्लिश में तुम बताना। तुम मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूं, हिंदी में मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूं, मैंने संबंध में इस मामले में, तो अंग्रेजी में तुम क्या

0: लिखोगे?
1: आई हैव बीन
0: डायरेक्टेड
1: इन इन्फॉर्म यू,
0: टू इन्फॉर्म यू, ठीक
1: जी।
0: आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म
1: यू,
0: मैंने मुझे निर्देश हुआ है
1: जी,
0: मुझे निर्देश हुआ है आपको ये सूचित करने के लिए
1: जी,
0: हिंदी में, तो इंग्लिश में आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू। उसी प्रकार सो विवेक से, इसके लिए क्या शब्द है? सो विवेक से, अपनी समझ से, इसके लिए जानते हो इंग्लिश में क्या है?
1: नहीं गुरुजी।
0: ये है इन हिज डिस्क्रिशन, एक डिस्क्रिशन पावर होता है ऑफिसर का
1: जी,
0: उसको कहते हैं सो विवेक से, अपनी समझ से वो विचार लेता है, निर्णय लेता है
1: जी।
0: हा? उसी प्रकार इन फुल एंड फाइनल पेमेंट, इंग्लिश में कहते हैं इन फुल एंड फाइनल पेमेंट, इसके लिए हिंदी में क्या होगा?
1: कुल और चुकता भुगतान।
0: बहुत अच्छा शाबाश, कुल और चुकता भुगतान। उसी प्रकार इन लमसम, इन लमसम, इसके लिए क्या है?
1: एक बार में,
0: एक बार में, एक मुस्त भी कहते हैं, एक मुस्त मतलब एक बार में पेमेंट हो जाना, कुछ काम हो जाना
1: जी।
0: उसी प्रकार इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, अंग्रेजी में है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जानते हो इसका अर्थ क्या है? प्रायोरिटी मैंने अग्रता, क्या कहा मैंने?
1: अग्रता।
0: हाँ, उसको लगा के कहो इन ऑर्डर प्रायोरिटी क्या होगा?
1: अग्रता के क्रम से।
0: बहुत अच्छा, अग्रता के क्रम से। उसी प्रकार जस्टिफिकेशन फॉर द प्रपोजल क्या होगा?
1: प्रस्ताव का औचित्य,
0: औचित्य, प्रस्ताव का औचित्य। उसी प्रकार इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। ठीक है, अब समय हो गया है, हम यही रखते हैं।
1: प्रणाम गुरुजी,
0: खुश रहो।
2: अभी आप लोग सुन रहे थे प्रशासन संबंधित वाक्यांश का अभिव्यक्ति के ऊपर चर्चा। हमारे साथ थे गुरुजी डॉक्टर अजित प्रसाद महापात्र और उनके साथ थे छात्र अभिनव शर्मा।
3: आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र परवर्ती कार्यक्रम रिले कर प्रचार करुछ आकाशवाणी दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।

0: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
0: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
1: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और यह समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के

0: भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया

0: आज एक डॉलर की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani, and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
3: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry.
3: We had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue.

0: हे श्रोतृमंडळी, नारी को अपर्णा प्रमाण कले ए बण रे जत्ते जन्म होइछन्त ना मिसार ने केही कार शत्रु नहंती। हाथी रो सिंह रो जन्म तो शत्रु तो थाए किंतु हाथी दूरे था हाथी छुआटी अच्छी हाथी खाया भल पाए नड़िया
1: नड़िया
0: सिंघी गोटे नड़िया गड़ई गड़ाणी दे दूचे खाया पाए हाथी छुआ को से हाथी क्षति न करी बर तो खाद्य दौची शत्रुता पाखे मित्र तार बंधा पड़ी तापर द्वित कथा गोटे बाघुणी शबकटी जन्म दे मुर्गुणी शबक जन्म दे दुर्भाग्य मुर्गुणी कड़े चली जाइ मुर्ग शिशु को भोक हला से तो जानपर बाघुणी स्तन्यपान करने उद्देश्य मुहटे लगे बाघुणी चाहदेला आहा शिशुटी तो कह क्षति कर जो सिंह बाघ बाघुणी मुर्ग मुर्गुणी खाइबा कथा ए स्थान बाघुणी बर आदर निज पिला भली विचार करी स्तन्यपान करौछि मृग शिशु को साप एवं मयूर मयूर खादक सर्प खाद्य गुढ़ापद गुप्त पद।

हे त्रिकाळज्ञ पुराणर अभिज्ञ धर्मशास्त्र पटु एणु आपण निश्चित सतमुनि कहिपारिबे कारण आपण लोमहर्षण ज्ञानीक पुओ ए कलिजुग अरे किभळि आसुचि कळी किभळि निर्माण हेले बा सृष्टि हेले लोक मानंकर अवस्था कोण हेबो एवं तार प्रतिकार पई संक्षेपरे कहंतु शुक परीक्षितंक मध्यरे आलोचना चलीछि। प्रथमे ब्रह्मा नारदंक कहिथिले, नारद व्यासंक सुनैथिले, व्यास तांकर शिष्य शुकमनिक सुनैथिले, शुक परीक्षितंक मध्य सुनैथिले कळीर प्रभाव किभळि भागवतर उल्लेख अछि। एणे हेइछि कोण ना जेतेबेळे द्वापर युग सरी आसुछि पांडव माने बनवास हेइछन्ति स्वर्गारोहण करिव जाइछन्ति द्वापर शेष कळी आगमन प्राय आसिबार समय आसिगलाणि। एहि समय कले कोण ना युधिष्ठिर।

युधिष्ठिर प्रभु को भल पाते भगवान कृष्ण से तो अवतारी पुरुष पूर्ण ब्रह्म ही पारती पांडव को भल पाते एणु युधिष्ठिर महाराज करदेला जाने कली समय आसीगला जग बल भगवान अच्युत कृष्ण जापारे एणु से मायार निजर वंश को आगे बुड़ी देले भागवत पदटे जे माया को धरिछन्ति जे सृष्टि रो कर्ता पालन कर्ता एवं संहार कर्ता साधारण लोक काई जानिबे शेष मुहूर्त निजर वंश बुड़ला परे माया रे जारा सबर सराहत हेवा सराहत करन्ते भगवान कृष्ण अर्जुन ठारु कोला नै वैकुंठगामी हेले पर मुहूर्त रे प्रलय होइगला विश्व प्रलय हला परे द्वापर युग शेष एबे आरंभ हवा को जीव कली युग सत्तरे चारिपाद धर्म त्रेतयार तीन पाद धर्म द्वापर दुई पाद धर्म कली रे धर्म रे पाद होउछि एक एणु विश्व सृष्टि करिया पे ब्रह्मा विश्वनाथ प्रभु नारायण को स्मरण कले ते ध्यान कले बिना परामर्श रे प्रभु ब्रह्मा किछि करि पारंति नाही डाकुचंती व्यासदेवंकर लेखा भागवत रे गोटे पद स्तुति करुचंद ब्रह्मा नारायण को नारायणस्तम सर्वदेहिनाम

पुती गंध नर्क दुर्गंध जो आज आप देखु सहर रु मफसल पर्यंत ग्रामांचल रु महानगरी पर्यंत लाटिन ठारु ड्रेन कड़ा पर्यंत सब जगह दुर्गंध होशान स्वतंत्र सरकार हो पारे एभली भाव दुष्ट अवस्था दुर्गंध अवस्था शब बाहर जे ठिकना मिलन शब कह एणु हे सज्जन जानी हे ज्ञानी वर्ग पुती गंध दूर के चेष्टा कले भी तो पुती गंध जो कली रही दुनिया झमेला झगड़ा हूँ कारण रही स्थान द्यूत पशा खेल जुआ खेल एवं लटेरी स्वीकृत मद्य मद्य जो कली रही भागवत जगन्नाथ गोटे पद शिक्षा देना गोटे पद से कह पोक मारुची पो बापू मारुची स्त्री मध्य स्वामी की मारुची स्वामी मध्य स्त्री की मारुची विपद मान समस्या सृष्टि होची मद्य जनित अपराध अधिक एणु मद जो कली रहा कामिनी नारी नारी जत्र मूल्यांकन बहुत बेसी लक्ष्मी रूपे से अन्नदात्री सरस्वती रूपे पुराण मत आशीर्वाद दात्री शिक्षादात्री दुर्गा रूपे आशीर्वाद प्रदायनी काली रूपे संहारकारिणी दुर्भाग्य एवं महिला जगण हेले किसी जो शिक्षार प्रभाव न पहुंची नारी मान सुरक्षित मन कर तेणु कथार ना जे माँ हेले पाठोई एणु नारी जागरण महिला जागरण एकांत आवश्यक ना अशिक्षित हेले कली सहज प्रवेश कर स्थान कांचन धनर लोभ अर्थम मनर्थम चिंतय नित्यम नास्ति ततः सुख लेश सत्यम पुत्रात्पि धन भाजं भीति सर्वत्र यसा कथिता नीति नीतिविद गोटे श्लोक कहले धन पे समस्त व्यतिवस्त इंग्लिश वाला कहते मनी मनी मनी ब्राइटर देन सन शाइन सूटर देन हनी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जानी और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव

0: ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपन माने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
2: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मु लहरिका पटनायक। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार राज्य क्याबिनेट बैठक अनुषित 7 विभाग 13 प्रस्ताव को अनुमोदन। ग्राम्य उन्नयन विभाग सर्वाधिक 7 प्रस्ताव को अनुमोदन मिलता सूचना। भुवनेश्वरस्थित लोकभवन में 2023 ब्याच्र ओडिशा प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षार्थी सहित भाव विनिमय कले राज्यपाल डॉ हरिबाबू कम्भम पाटी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजना संपर्क में ज्ञान अर्जन कर सरकार और नागरिकों मध्य सेतु भाव उन्नत सेवा प्रदान करने को दे परामर्श। आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में कोविड 19 को दृष्टि रखि आज भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में समीक्षा बैठक आयोजित। राज्य सरकार कोविड परिस्थितर मुकाबला संपूर्ण सजग बोली कहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ मुकेश महालिंग। कटक लोकार्पित होला राज्यर सर्वबृहत विश्वनाथ पंडित केन्द्रीय पाठागार। मुख्य अतिथि भाव जोगदे स्मार्ट लाइब्रेरी को उद्घाटन कले राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र। 3 एकर जमीन 42 कोटी टंका खर्च में निर्माण होइछि एक बृहत प्रकल्प। गुरुडीहटियाठारे 5 एकर जमीन हेबाकु थिबा गोशाळार भित्तिप्रस्तर स्थापन कले मंत्री। श्रीक्षेत्र नवजौवन बेश श्रद्धा दर्शन देले चतुर्धा मूर्ति। आसंता प्रतिपदा तिथि अनुष्ठित हेबो श्रीजीवों उभाजात्रा। गुरुवार श्रीगुंडीचा यात्रा को दृष्टि रखि आसंता सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना। विश्वप्रसिद्ध रथयात्रार आयोजन ट्राफिक सुपरिचालन उपर गुरुत्व। 6 नुआ पार्किंग स्थल को मिसाई कराई मोट 30 पार्किंग स्थान। भक्तों सहायता स्थापन कर 73 ट्राफिक एडपोस्ट। लगाण वर्षा जो आसंता भद्रक जिले में सब् स्कूल छुट्टी नहीं घोषणा कले जिलापाल। घूर्णीबलय प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में लगि रही वर्षा। आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा नहीं 13 जिला को पाणीपाग केन्द्र पक्ष सतर्क सूचना जारी। समुद्र अशांत रह मत्स्यजीवी मान समुद्र मध्य जीवाक बारण। मुख्य संवाद आज शुभरात्रि, नमस्कार।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
1: यहां खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहां होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सब

0: सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले
2: आकाशवाणी कटक सुनतो श्रीक्षेत्र माधुरी आज इतने विषय रही रथ उपरे गजपति छेरा पहरा सेवा आलोचक डॉक्टर भास्कर मिश्र प्रयोजना प्रदीप्त श्रीचंदन।

0: और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।

0: ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲେ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଗୀତ ରଚନା ଚଣ୍ଡୀ ଦାସ।
1: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो। ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
2: ठीक लागुनी, स्कैम भी हेइ पारे।